वो जा रहा है कोई शगुफा गुजार, वीरा है मैं कदा खुम सागर उदास, तुम क्या गए के रूठ गए दे।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online, and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS हिंदी के दैनिक रेडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है. ये है 6 जुलाई की एक ढलती हुई बारिश वाली शाम और आप सभी को वृषाली जैन का प्यार भरा नमस्कार. कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद मस्त होंगे. आज का SBS हिंदी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों कैमरागिल राष्ट्र के लोगों और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद करते हैं जिनकी धरती पर ये कार्यक्रम आज सुना जा रहा है. दोस्तों, आज मुझे बस इतना बताइए कि अगर कोई गीत आप सुनना चाहते हैं तो उसका नाम पता मुझे भेज दीजिए 04397997 पर. इसके अलावा कार्यक्रम में सबसे पहले आपके लिए लेकर के आऊंगी संक्षिप्त समाचार, फिर चर्चा करेंगे ऑस्ट्रेलिया और वनातू के बीच हुए एक ऐतिहासिक अनुबंध की, फिर प्रस्तुत करेंगे भारत की खबरें इंडिया रिपोर्ट में और उसके बाद बात होगी संयुक्त राष्ट्र से आई AI पर एक रिपोर्ट की. अंत में सुनेंगे कैसे मौत के मुंह से लौटा एक अबोरिजिनल बच्चा कला के जरिए लौट रहा है जीवन की ओर. और इसके अलावा रहेंगे आपकी पसंद के गीत. तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं बताइए मुझे 04397997667 पर. जब तक आप मुझे अपने संदेश भेज रहे हैं आइए सुनते हैं आज

0: के संक्षिप्त समाचार। पेश है आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि चाइना ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार को अगले 24 घंटों में पैसिफिक ओशन में समुद्र आधारित मिसाइल परीक्षण करने की सूचना दी है। हालांकि चाइना की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार चाइना ने आज दोपहर प्रशांत क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। चाइना का कहना है कि परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी से किया गया ये परीक्षण उसके वार्षिक सैन्य अभ्यास का हिस्सा है और संबंधित देशों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत पहले ही सूचित किया गया था। शिन्हुआ के मुताबिक ये परीक्षण किसी विशेष देश को निशाना बनाकर नहीं किया गया। वहीं सेनेटर वोंग ने कहा कि क्षेत्र ने स्पष्ट कर दिया है कि वे शांति चाहता है। वहीं दूसरी ओर फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका ने आज राजधानी सुवा में ऑस्ट्रेलिया के साथ दो ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी और प्रधानमंत्री राबुका ने वुवाले यूनियन और ओशन ऑफ पीस अलायंस नाम से दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन ऐतिहासिक समझौतों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग, आर्थिक मजबूती, प्रशांत क्षेत्र की समृद्धि और द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करना है। वहीं इस नाइडॉक वीक के अवसर पर सेवानिवृत्त गुंजटमारा समुदाय के वरिष्ठ अबोरिजिनल लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और फिल्मकार रिचर्ड फ्रैंकलिन ने सभी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों से ट्रूथ टेलिंग, न्याय और एकता को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने इस वर्ष का एल्डर इन रेसिडेंस ओरेशन दिया, जो हर वर्ष आयोजित होने वाला एक व्याख्यान है और जिसमें प्रथम राष्ट्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया जाता है। अपने संबोधन में उन्होंने अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर समुदायों के धैर्य और संघर्ष को सम्मान दिया। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के इतिहास और प्रथम राष्ट्र समुदायों के साथ हुए अन्याय के बारे में खुलकर सच स्वीकारने की आवश्यकता पर जोर दिया। और इस वर्ष होने वाली ऑस्ट्रेलियाई जनगणना यानी सेंसस की तैयारियां तेज हैं। इस बार एंसेस्ट्री, लिंग पहचान और सेक्सुअल ओरिएंटेशन से जुड़े प्रश्नों में बदलाव किए गए हैं, ताकि ऑस्ट्रेलिया की विविध आबादी को बेहतर ढंग से दर्शाया जा सके। 11 अगस्त की रात जनगणना की संदर्भ तिथि होगी, जिसके आधार पर उस समय ऑस्ट्रेलिया में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति का विवरण दर्ज किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की राष्ट्रीय जनगणना प्रवक्ता एमिली वॉल्टर का कहना है कि विविध और बहुभाषी समुदायों के लिए कई भाषाओं में जानकारी और सहायता सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,300 से अधिक हो गई है। वहीं कई परिवार अब भी मलबे में दबे अपने प्रियजनों की तलाश में जुटे हैं। इन भूकंपों के कारण 17,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। विस्थापित लोगों के लिए वेनेजुएला की सरकार ने 80 अस्थायी राहत शिविर बनाए हैं। दोहरे भूकंप के 11 दिन बाद अब राहत और बचाव अभियान से ध्यान हटकर पुनर्वास कार्यों पर केंद्रित हो गया है। इस बीच कई प्रभावित लोगों ने सरकार की आपदा प्रतिक्रिया को अपर्याप्त बताते हुए नाराजगी जताई है। और अंत में खबरें भारत से। भारत में भीषण गर्मी की मार झेलने के बाद अब देश के कई हिस्सों में मॉनसून ने राहत दी है, लेकिन कई राज्यों में यही बारिश अब परेशानी का कारण बन गई है। दिल्ली, मुंबई, केरल और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। मुंबई के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि मुंबई, पुणे, ठाणे और पालघर में एहतियात के तौर पर स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पुणे मुंबई लिंक रोड पर भूस्खलन के बाद यातायात प्रभावित हो गया है। वहीं दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट के बीच तेज बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इसी के साथ 6 जुलाई 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। और संक्षिप्त समाचार के बाद अब आइए चर्चा करते हैं ऑस्ट्रेलिया और वनुआतु के बीच हुए $500 मिलियन के एक ऐतिहासिक रणनीतिक समझौते की। हालांकि ये समझौता उससे थोड़ा अलग है जो ऑस्ट्रेलिया की अपेक्षा थी, लेकिन अब इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि ये इन दोनों देशों के बीच हुआ अब तक का सबसे बड़ा समझौता है। क्या है ये समझौता, क्यों ये कैनबरा की उम्मीदों से अलग है, क्या है ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में।
1: दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और वनुआतु ने $500 मिलियन के एक ऐतिहासिक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये दोनों देशों के बीच अब तक का

0: पहला व्यापक सुरक्षा और विकास समझौता माना जा रहा है। ये समझौता ऑस्ट्रेलिया को प्रशांत क्षेत्र में वनुआटू का प्रमुख सुरक्षा साझेदार बनाता है। हालांकि ये उस अधिक सख्त और विस्तृत समझौते से थोड़ा अलग है जिसकी उम्मीद पहले ऑस्ट्रेलिया ने की थी। इस बीच इस डील पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। चीन ने इस समझौते पर चिंता जताते हुए कहा है कि ये चीन को लक्षित करता है और ऑस्ट्रेलिया को जियोपॉलिटिकल गेम से बचने की चेतावनी दी है। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी और वनुआटू के प्रधानमंत्री जोथम नापात ने इस समझौते पर कैनबेरा में औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए।
1: So grateful to you.
2: Yeah, very welcome.
1: Good to see you.
2: Good to see you. Welcome. Beautiful. Now come in, we'll sign the book here.
0: दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात काफी गर्मजोशी से भरी रही, जिसमें समझौते को दोनों देशों के भविष्य के संबंध के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। ये नाकामाल अग्रीमेंट उस घटना के लगभग 10 महीने बाद आया है, जब वनुआटू के प्रधानमंत्री जोथम नापात ने पहले निर्धारित हस्ताक्षर समारोह से अचानक पीछे हटने का फैसला किया था। उस समय वनुआटू में इस बात को लेकर चिंता जताई गई थी कि ये समझौता देश की संप्रभुता को प्रभावित कर सकता है और चीन जैसे देशों के साथ उसके स्वतंत्र आर्थिक संबंधों पर भी असर डाल सकता है। हालांकि इस बार तस्वीर बदलती नजर आई है। वनुआटू के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये समझौता दोनों देशों की साझा प्राथमिकताओं को दर्शाता है, एक शांत, स्थिर और समृद्ध प्रशांत क्षेत्र के लिए।
3: ऑस्ट्रेलिया एंड वनुआटू आर क्लोज नेबर्स, ट्रस्टेड पार्टनर्स एंड एंश्योरिंग फ्रेंड्स। Today's meeting reaffirms our shared commitment to continue to strengthen the comprehensive partnership between our two countries.
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने भी इसे एक संतुलित और समान साझेदारी बताया है। उन्होंने कहा,
2: Above all, it is built on an equal partnership. We have concluded a balanced agreement that will protect our collective and individual security and our sovereignty. And it will support our interest in a stable, prosperous and secure region that we both call home.
0: इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया अब वनुआटू का प्रमुख सुरक्षा, पुलिसिंग और विकास साझेदार बन गया है। इसके साथ ही ये भी तय किया गया कि वनुआटू जब भी किसी तीसरे देश के साथ अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे से जुड़े समझौते पर विचार करेगा तो उसे ऑस्ट्रेलिया से परामर्श करना होगा। हालांकि इस बार समझौते में वे वीटो पावर शामिल नहीं है, जिसकी मांग ऑस्ट्रेलिया ने पहले चरण में की थी। ये बदलाव दोनों देशों के बीच बातचीत और संतुलन का परिणाम माना जा रहा है। वनुआटू के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनका देश अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क है। उन्होंने ये भी दोहराया कि वनुआटू अपने क्षेत्र में किसी भी विदेशी सैन्य बेस या सैन्य ढांचे की अनुमति नहीं देगा।
3: We have, in fact, passed an act in Parliament not to allow any militarization to actually be used for our critical infrastructure. And we give a very strictly attention to all our critical infrastructure.
0: उनके अनुसार ये कानून देश की स्वतंत्र नीति और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने इस समझौते को transformational breakthrough बताया है।
4: I've been very upfront with Australians. We're in a permanent contest in the Pacific, a permanent contest for influence. So we are very pleased that we have, after a lot of negotiation and discussion, signed the agreement yesterday between the two prime ministers that confirms Australia's place as Vanuatu's most principal economic security and development partner.
0: वहीं ऑस्ट्रेलियाई सरकार का मानना है कि ये समझौता प्रशांत क्षेत्र में उसकी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करता है, खासकर ऐसे समय में जब क्षेत्र में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। पेनी वोंग ने यह भी कहा है कि ये समझौता ऑस्ट्रेलिया को वनुआटू का प्रमुख आर्थिक, सुरक्षा और विकास साझेदार बनाता है। इस समझौते को केवल द्विपक्षीय संबंधों के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा माना जा रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये डील ऑस्ट्रेलिया को क्षेत्र में आर्थिक और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर मजबूत स्थिति देती है। लोई इंस्टीट्यूट के पैसिफिक आइलैंड्स प्रोग्राम डायरेक्टर ओलिवर नोबिटाओ के अनुसार इस समझौते में निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश पर जोर दिया गया है।

0: जो ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक उपस्थिति को मजबूत कर सकता है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र में चीन के बढ़ते निवेश और प्रभाव के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
1: Something that you don't always see is that there's a strong commitment within the agreement as well for sort of private sector linkages to assist with propping up Vanuatu's economy. So I think that's a key win for Australia to be a partner to ensure that it has a say or sort of can direct Australian investment going into Vanuatu as well. And that's a key area that we've been seeing competition across other Pacific Island countries as well, where there's a lot of Chinese investment.
0: वहीं चीन की ओर से इस समझौते पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। चीन ने कहा है कि वे प्रशांत द्वीप देशों के साथ अपने सहयोग में पारदर्शिता, समानता और विकास पर जोर देता है और ये उम्मीद करता है कि कोई भी देश इस क्षेत्र को भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मंच न बनाए। इसी बीच वनुआटू चीन के साथ भी एक अलग समझौते नमेल अग्रीमेंट को अंतिम रूप दे रहा है। प्रधानमंत्री नापात ने कहा है कि जैसे ही ये समझौता पूरी तरह से हस्ताक्षरित हो जाएगा, इसे सार्वजनिक किया जाएगा।
2: It is not yet signed. We will share the agreement. There's nothing to hide. Our government is transparent.
0: वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक इस समझौते की पूरी जानकारी सामने नहीं आती है, तब तक क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर इसके प्रभाव को पूरी तरह समझना मुश्किल है।
1: There's a risk that the Australian government does take on in that where it can be a partner of choice on paper, but no country really is limited from engaging with other countries as well. Until we see, you know, the actual copy of the Namello agreement, we won't actually know the full on extent to that.
0: विश्लेषकों के अनुसार वनुआटू अब एक ऐसे दौर में है जहां वे विभिन्न वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ये नया समझौता निश्चित रूप से उसकी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा, लेकिन चीन के साथ उसके संबंध भी समान रूप से महत्वपूर्ण बने हुए हैं। SBS न्यूज के लिए एंजेलिका व्हाइट और रायन टेमर की इस खबर को SBS हिंदी में आप तक लेकर आई भव्या पांडे।
3: और वे संच के बाद कार्यक्रम में वक्त पहले अंतराल का, अंतराल के उस पार करेंगे भारत की खबरों की चर्चा मनन कुमार के साथ। बने रहिए SBS हिंदी पर और मुझे जरूर बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। 04397997667 हमारा नंबर है, आपके संदेशों के इंतजार में हूँ। और जो सबसे पहला गीत का सजेशन आएगा, अगर मेरी लाइब्रेरी में होगा तो वो आपको सबसे पहले सुना दूंगी मैं। इसी के साथ ले रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए वृशाली के साथ। मैं बस यूं गई और यूं आई, आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा SBS हिंदी को।
4: NITV पर जाने उन मुद्दों के बारे में जो एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए मायने रखते हैं। देखें NITV चैनल 34 और SBS ऑन डिमांड पर। पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार SBS वर्ल्ड मूवीज पर देखिए, सातों दिन 24 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें।
5: SBS आपके तैयार होते ही तैयार है। एलेक्सा, गूगल होम या एप्पल स्मार्ट स्पीकर के साथ जुड़े रहना आसान है। सुनिए ताजा खबरें, विचार और कहानियां SBS हिंदी से जब चाहें। बस कहें प्ले SBS हिंदी पॉडकास्ट। SBS ऑडियो, संगीत, रेडियो और पॉडकास्ट आपकी लय से मेल खाते हुए।
6: SBS चिल पर दुनिया भर के संगीत के साथ आराम करें। SBS चिल सुनने के लिए SBS ऑडियो ऐप पर जाएं।
4: SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं।
7: Unscripted, untamed, unforgettable.
8: Lord Season 4, the Arctic. Nothing can prepare you for this.
7: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
9: It's a whole new frontier.
10: Oh my God!
7: The absolutely real.
11: Cold like this can kill you.
7: Reality series.
8: It's on like Donkey Kong.
7: Alone Australia. Streams 15th of July on SBS On Demand.

0: और ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर. आप सुन रहे हैं वृषाली को. आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत सीधा सा सवाल है. कोई गाना सुनना चाहते हैं और खासकर सिडनी की इस बारिश वाले मौसम में कोई गाना सुनना चाहते हैं तो मुझे 04397997667 पर आप बता दीजिए. मेरी लाइब्रेरी में अगर वो उपलब्ध हुआ तो मैं वो गाना पक्का आपके लिए लेकर के आऊँगी. अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनेंगे भारत की बड़ी खबरें जिन्हें लेकर के आते हैं हर सोमवार हमारे लिए मनन कुमार. आइए मैं और आप मिलकर के इनको सुनते हैं और इसी के साथ आपके संदेशों के इंतजार में हूँ. आपके कुछ संदेश मेरे पास आए हैं जिन्हें मैं इस रिपोर्ट के बाद पढ़ के सुनाती भी हूँ.
1: SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार. पेश हैं भारत के समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करेंगे. चीन और बांग्लादेश के पिछले हफ्ते हुए संयुक्त बयान, जो सामरिक संबंधों में प्रगाढ़ता दिखाता है, के बाद हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं. इसलिए यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. भारतीय सचिव पूर्व रुदेंद्र टंडन ने इस दौरे की विस्तृत जानकारी देते हुए इशारा किया कि इस दौरे में रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र खासे महत्वपूर्ण रहेंगे. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई दौरे के बारे में बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के बीच तीसरी वार्षिक बैठक में भाग लेंगे. ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारतीय छात्रों के लिए वीजा और ट्यूशन फी बढ़ाए जाने के मुद्दे पर संयुक्त सचिव विश्वेश नेगी ने कहा कि इस विषय पर भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ बात कर उपाय ढूंढने की कोशिश कर रहा है.
2: We are aware of the concerns of the Indian students facing delays in approval of the student visa applications, including various other aspects for their as part of the process of admission. We continue to remain engaged with Australian government to ensure that visa process for Indian students does not reduce opportunities for genuine students and also professionals, actually. So we are engaged with Australia on this issue, and it will be part of the discussion.
1: पाकिस्तान के दो मंत्रियों द्वारा सिंधु जल संधि रोके जाने को लेकर दी गई चेतावनी के बाद भारत ने संधि को निलंबित रखने का अपना निर्णय फिर से दोहराया है. भारत के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर पूरी तरह रोक नहीं लगाता तब तक यह निलंबन जारी रहेगा. पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने हाल ही में कहा था कि पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के हाथ में एक नल का नियंत्रण है. उनका कहना है कि वह पाकिस्तान की ओर पानी की एक बूंद भी नहीं बहने देंगे. इससे ठीक पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक दार ने संधि को लेकर गंभीर परिणामों की चेतावनी दी थी.
3: Let us reaffirm that shared waters must never be weaponized. Any attempt to deprive Pakistan of the waters rightfully allocated to Pakistan under the Indus Water Treaty would have profound consequences.
1: आपको बता दें कि अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोकने का निर्णय लिया था. राजधानी दिल्ली समेत 12 राज्यों में SIR यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही इंडिया गठबंधन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को पत्र लिख इसे रोकने और बैलेट पेपर व्यवस्था को फिर से अपनाने पर गंभीरता से विचार करने की मांग की है. 24 विपक्षी दलों और निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल के हस्ताक्षर वाले इस 8 पन्नों के पत्र को हालांकि पिछले मंगलवार मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया था, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर इसे जनता से साझा करने का निर्णय लिया गया. इस पत्र में दावा किया गया है कि चुनावी लोकतंत्र को मोदी शाह सरकार से सबसे बड़ा खतरा है. पत्र में चेतावनी दी गई है कि जब संस्थाएं खुद दमन का हथियार बन जाती हैं और सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाती हैं तो लोकतंत्र का भविष्य गंभीर परिणामों से घिर जाता है. 2080 शब्दों के इस पत्र में SIR को बहुत बड़ी विफलता बताते हुए चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खुले तौर पर पक्षपाती व्यवहार और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों जैसी कई चीजों पर भी सवाल उठाए गए हैं. पत्र में कहा गया है कि सामान्य परिस्थितियों में हम आपको पत्र नहीं लिखते, लेकिन चूंकि हमारा लोकतंत्र खतरे में है इसलिए हमने यह असामान्य रास्ता चुना है. जब बाकी सब रास्ते बंद हो

0: जाते हैं तब भी लोग न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। इसलिए जब न्यायपालिका कोई प्रतिक्रिया नहीं देती तो यह लोकतंत्र के पूरी तरह से विफल होने का संकेत है। राम मंदिर में हुई चोरी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लंबी चुप्पी तोड़ते हुए सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसाबले के माध्यम से हिंदुओं की भावनाएं आहत होने पर क्षोभ व्यक्त किया है। श्री होसाबले ने हिंदू समाज से राम मंदिर ट्रस्ट और SIT द्वारा की जा रही जांच पर भरोसा रखने और हिंदू धर्म को बदनाम करने वालों से सावधान रहने की अपील भी की।
1: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे।
0: लेकिन लगभग सभी विपक्षी पार्टियां इसे घबराहट में पड़ा गया लीपापोती वाला बयान और बड़े चोरों को बचाने की साजिश बता रही हैं। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता आराधना मिश्रा ने RSS के बयान पर क्या कहा।
2: कौन है चंपत राय, कौन है अनिल मिश्रा, कौन है गोपाल राव? ये वो लोग हैं जो RSS से जुड़े हुए लोग और जिन्होंने लगातार इस ट्रस्ट का संचालन किया। क्या RSS में इतना दम है? मैं चुनौती देती हूँ कि अगर आज ये दुख व्यक्त कर रहे हैं, अपने आप को इस घटना से अलग कर रहे हैं, इस पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, तो क्या वो स्पष्ट करेंगे कि ये तीनों प्रमुख चेहरे हैं, क्या ये RSS के नहीं है? और अगर है तो RSS ने अभी तक क्या कार्रवाई करी इन पर?
0: प्रसिद्ध क्लाइमेट चेंज कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन पर बैठने के बाद से कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन और व्यापक होता दिख रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर स्थित धरना स्थल पर अब कई विपक्षी पार्टियों के नेता और विख्यात लेखक, चिंतक और यहाँ तक कि साधु संत भी समर्थन देने पहुंचने लगे हैं। इनमें से कुछ जाने माने नाम हैं लेखिका अरुंधति रॉय, 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी पंडित रामकिशन, राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव, मानव अधिकार कार्यकर्ता प्रशांत भूषण, निखिल डे और अंजलि भारद्वाज, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, वामपंथी दलों से जॉन ब्रिटस, MA बेबी, वृंदा करात, एनी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह। श्री सिंह ने छात्रों की आवाज बुलंद करते हुए भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को पेपर लीक और राम मंदिर चोरी समेत कई मुद्दों पर घेरा।
3: देश से प्यार क्या होता है वो सोनम वांगचुक से आके सीखो। क्या होता है देश से प्यार? यहाँ पे जो नौजवान है उनसे आके सीखो, उनसे आके सीखो, थोड़ी शिक्षा तुम्हारी भी बढ़ेगी। लेकिन सीखोगे कैसे? तुम तो दूसरा काम सीखने में लगे हो, स्कूल लूट रहे हो या नौजवानों को दो वक्त के खाने की रोटी नहीं मिल रही है। लेकिन तुम लोग स्कूल खा रहे हो, अस्पताल खा रहे हो, सड़क खा रहे हो, बिजली खा रहे हो, पानी खा रहे हो, हवाई जहाज खा रहे हो, समुद्री तट खा रहे हो, गैस खा रहे हो, कोयला खा रहे हो, पेपर खा रहे हो और श्री राम का मंदिर भी खा रहे हो।
0: राम मंदिर में चोरी और पेपर लीक के अलावा भारत में एथेनॉल 20 मिश्रित पेट्रोल यानी E20 पेट्रोल का मुद्दा भी बड़े पैमाने पर उठ रहा है। सोशल मीडिया पर सैकड़ों की संख्या में लोग E20 की वजह से गाड़ियां खराब होने का दावा कर रहे हैं। कई प्राइवेट मोटर विशेषज्ञों का मानना है कि भारत 4 कंप्लायंट और उससे पहले की कारें और दुपहिया वाहनों के इंजन इससे खराब हो जाते हैं, जबकि पुरानी कार्बोरेटर वाली विंटेज और क्लासिक गाड़ियों में तो इसका प्रयोग उनकी हत्या करने के समान है। विपक्षी पार्टियां खासकर कांग्रेस भी इसे लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस का आरोप है कि पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को इथेनॉल सप्लाई करने वाली मुख्य कमर्शियल कंपनियों में सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और मानस एग्रो शामिल हैं, जिनको सीधे तौर पर कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी के बेटे निखिल और सारंग गडकरी प्रमोट और मैनेज करते हैं। लेकिन भारत सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि E20 पेट्रोल सभी गाड़ियों के लिए मुफीद है। अपने बचाव के लिए सरकार ने शनिवार

0: रविवार को ऑटोमोबाइल कंपनियों के उच्चाधिकारियों से एक प्रेस वार्ता भी करवाई। इस पैनल का कहना है कि बड़े पैमाने पर हुई टेस्टिंग में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे पता चले कि E20 पेट्रोल गाड़ियों के लिए कोई समस्या पैदा करता है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का संशय नहीं हटा है। यह डर पड़ोसी देश भूटान द्वारा भारतीय ऑयल कंपनियों के E20 पेट्रोल लेने से मना करने के बाद और भी बढ़ गया है। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।
1: और मेलबर्न से मनन जी की रिक्वेस्ट थी कि वो धुरंधर का कोई गीत सुनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये गीत, जिसके बाद लूंगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार करेंगे यूएन से आई एआई के ऊपर एक रिपोर्ट पर। तो बहुत कुछ हो रहा है, बस फिलहाल मनन जी की ये रिक्वेस्ट।

0: Hits from Home.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: तैयार है एलेक्सा गूगल होम या एप्पल स्मार्ट स्पीकर के साथ जुड़े रहना आसान है सुनिए ताजा खबरें विचार और कहानियां SBS हिंदी से जब चाहें बस कहें प्ले SBS हिंदी पॉडकास्ट SBS ऑडियो संगीत रेडियो और पॉडकास्ट आपकी लय से मेल खाते हुए
3: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए sbs.com.au/hindi पर जाएं। क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर हमारा पेज लाइक करें SBS हिंदी फेसबुक पर भी है
4: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर आप सुन रहे हैं वृषाली को और मेरे पास संदेश आए हैं क्लाइड से ब्रजेश जी के जो पहला नशा पहला खुमार सुनना चाहते हैं इसके अलावा उन्होंने एक ऑप्शन भी दिया है हमें कि हम बदतमीज दिल बजा दें ये जवानी है दीवानी फिल्म से और मेरे पास राजेंद्र वोरा जी का संदेश है कि वे गुड्डी फिल्म से बोले रे पपी हरा सुनना चाहते हैं सुरेंद्र चावला जी क्रिनबर्न से कहते हैं कि जिंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की रात के गाने उन्हें बहुत पसंद हैं और वो उन्हें सुनना चाहते हैं तो अब पहले आइए रुक करते हैं संयुक्त राष्ट्र से आई AI के ऊपर एक रिपोर्ट जो ये कह रही है कि AI का विकास सरकारों की निगरानी और नियमन की क्षमता से कहीं तेज है और इसके अपने खतरे हैं AI की अपनी अच्छाइयां हैं तो इसके अपने खतरे भी हैं इस पर चर्चा की है भव्या पांडे ने अनिरुद्ध देसाई के साथ जो कि रिसर्च प्रोफेसर हैं ला ट्रोब यूनिवर्सिटी में आइए सुनते हैं वे क्या कह रहे हैं
5: दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के एक प्रमुख वैज्ञानिक पैनल ने कृत्रिम बुद्धिमता जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं पर अपनी पहली वैश्विक वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी की है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि AI तकनीक इतनी तेजी से विकसित हो रही है कि दुनिया भर की सरकारें और नियामक संस्थाएं इसकी रफ्तार के साथ कदम नहीं मिला पा रही हैं ऐसे में एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि ये तकनीक साइबर सुरक्षा भ्रामक जानकारी यानी डिस इन्फॉर्मेशन और संभावित विनाशकारी जोखिमों जैसे गंभीर चुनौतियां भी पैदा कर सकती है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने AI पर संयुक्त राष्ट्र की पहली स्वतंत्र वैज्ञानिक समीक्षा रिपोर्ट पेश करते हुए ये बात कही
6: The panel is intended to help the world separate facts from fakes and science from slop.
5: ये पैनल पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा गठित किया गया था और इसमें कंप्यूटर विज्ञान अर्थशास्त्र चिकित्सा और पत्रकारिता सहित विभिन्न क्षेत्रों के 40 एक्सपर्ट्स शामिल हैं इस पैनल का उद्देश्य सरकारों को AI के तेजी से बदलते परिदृश्य को समझने के लिए वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित जानकारी उपलब्ध कराना है ऐसे में गुटेरेस का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपार संभावनाएं हैं
6: Used well, AI could be the most powerful engine for development, speeding the world's progress on everything from health and hunger to learning and climate. But the panel is just as clear-eyed about the harm artificial intelligence can cause. The co-chairs will go through their findings in detail. But first, let me draw a single lesson. The more AI advances without shared rules, the less say governments and people will have in the outcome.
5: इस पैनल ने अब AI पर अपनी पहली वैश्विक वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी करती है इस रिपोर्ट के अनुसार AI मेडिसिन रिसर्च वैज्ञानिक अनुसंधान और कई अन्य क्षेत्रों में तेजी से प्रगति को बढ़ावा दे रहा है जिससे लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं हालांकि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि AI की प्रगति उन नियमों और व्यवस्थाओं से कई तेज है जो इसे नियंत्रित करने के लिए बनाई जा रही है इस पैनल की सह अध्यक्ष मारिया रेसा का कहना है कि विशेषज्ञों की साझा सहमति भी चिंता बढ़ाने वाली है
7: It is the minimum we

0: we all agree on, and that is alarming enough. Three headlines. Pace is not slowing, the power is concentrating, and control is not guaranteed.
1: उनका कहना है कि एआई पर नियंत्रण कुछ गिनी चुनी कंपनियां और देशों तक ही सीमित होता जा रहा है।
0: A handful of companies and a handful of countries are making the most consequential decisions about humanity's future. The United States alone accounts for 75% of the computing power in the world's largest AI clusters.
1: इस पैनल के दूसरे सह अध्यक्ष और कैनेडाई कंप्यूटर वैज्ञानिक योशुआ बेंगियो का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता कुछ क्षेत्रों में हर कुछ महीने में दोगुनी हो रही है। उनके अनुसार एआई की बढ़ती क्षमता और उससे सुरक्षित रूप से नियंत्रित करने के तरीकों के बीच का अंतर लगातार ही बढ़ता जा रहा है।
2: Progress has proceeded quickly, doubling every few months according to some metrics for several years now. Meanwhile, there are still no known technical guarantees that AI will follow our instructions, norms or laws. And instead, growing evidence to the contrary, including AI acting deceptively.
1: बेंगियो का कहना है कि यदि इस चुनौती का समय रहते समाधान नहीं किया गया, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
2: Looking ahead, the gap between rapidly improving capabilities and effective risk management methods may lead to catastrophic outcomes. We've seen on our radar screen recently the issues with cybersecurity, but companies are worried about bio risks, and many in civil society are showing that AI can lead to disinformation that can threaten our democracies and our individual rights.
1: आइए जानते हैं एक्सपर्ट अनिरुद्ध देसाई का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है।
3: Thank you for having me. मेरा नाम है अनिरुद्ध देसाई। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। 20 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ। मैं अभी लट्रोब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का रोल करता हूँ। यहाँ पे सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन का डायरेक्टर हूँ और मेरा काम है रिसर्च डेवलपमेंट और जो टेक्नोलॉजी के स्किल्स है उनको लोगों तक कैसे बेहतरीन पहुँचाएं।
1: वे बताते हैं कि किस तरह से एआई ने शिक्षा के क्षेत्र में भी डिसरप्शन मचा दिया है।
3: कैसा है, एआई एकदम से आ गया है ना, दो चार साल में एकदम से इट इज बिकम रियली बिग। तो उसमें हुआ क्या है, दो चीजें हुई है, ठीक है। तो पहली चीज ऐसी हुई है कि जो प्राध्यापक हैं वो स्टूडेंट एम्प्लॉयबिलिटी के लिए ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, तो उनको जो एआई के यूटिलाइजेशन हो रहा है ना विद स्टूडेंट्स एंड विद करिकुलम, तो उसमें वो तीन चार चीजें कर रहे हैं, ठीक है। एक तो वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं छात्रों में, एआई को करिकुलम में इंटीग्रेट कर रहे हैं जहां पे पॉसिबल है, ठीक है।

0: Hits from Home.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: So, हमको सबमिशन आता है वो हम यूज करते हैं बट एंड ऑफ द डे देयर इज अ लिमिट उसका एक लिमिट होता है कितना यूज करते हैं एआई टूल को कोई यूज करते हो ठीक है उसको एआई टूल को बोलते हो कि ये मुझे भैया चैट जीपीटी है जैसे उनको अगर चार पॉइंट बोलते हो उसको बोलो ये चार पॉइंट पे मुझे ऐसे लिख के दो तो वो चैट जीपीटी एआई अच्छी तरह से लिख के देगा अच्छा व्याकरण होगा शैली ठीक होगी स्ट्रक्चर ठीक होगा पर उसमें क्या है छात्रों ने यह समझना सबसे जरूरी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी ज्ञान और सोच जो आप पहले पॉइंट देते हो कि ये पॉइंट पे मुझे करना है ये मेरे पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है तो छात्रों ने वो स्किल बढ़ाना चाहिए एआई इज देयर For the foreseeable future, AI is going to change the world. But उसमें ऐसा है कि अपना जो knowledge है और अपनी जो सोच है वो जितनी strong है उतना AI आपको और ज्यादा help करेगा वो help करेगा आपकी problem नहीं solve करेगा वो help करेगा वो सबसे important है छात्रों को समझना
5: इस पैनल ने सरकारों को स्पष्ट संदेश दिया है कि AI से जुड़े नियमों और सुरक्षा उपायों को तेजी से विकसित करना होगा ताकि इस तकनीक पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा जा सके इस रिपोर्ट के निष्कर्षों पर अगले हफ्ते जनेवा में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र के पहले AI संवाद में चर्चा की जाएगी हाना हेडसन की इस खबर को SBS हिंदी में आप तक लेकर आई भव्या पांडे

0: SBS फूड के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए। SBS फूड पर 7000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेख, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/food पर जाएं।
1: इनसाइट SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स, ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर।
0: अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS लर्न में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं।
2: SBS South Asian plays

0: SBS South Asian. Your news from here and hits from home.
1: अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्रों से लेकर क्लासिकल कल्ट फिल्मों तक, विश्व स्तरीय नाटक से लेकर गुदगुदाने वाली हास्य फिल्मों तक, देखिए SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर।
2: Lord season 4, the Arctic.
3: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
4: It's a whole new frontier.
5: Oh my God!
3: Alone Australia streams 15th of July on SBS On Demand. Shift into gear and watch the world's most brutal race. Brace for the ultimate test of endurance. This isn't just sport. It's pure drama. The Tour de France. Stream live 5th to the 27th of July on SBS On Demand.
6: ब्रेक के बाद आपका स्वागत है SBS हिंदी में। और आइए अब जानते हैं कि कैसे नाइडॉक वीक के समय पर, खासकर ये कहानी कि अब ओरिजिनल समुदाय से ये बालक शार्क के हमले के बाद लगभग मृत्यु के पास पहुंचकर कैसे कला से अब जीवन की ओर लौट रहा है। आइए सुनते हैं ये बहुत ही मार्मिक कहानी।
7: इतिहास जिसे वर्षों तक दबा कर रखा गया, अब स्टोलन जेनरेशंस की कहानियां एक नई प्रदर्शनी में कलाकृतियों के माध्यम से सामने लाई जा रही हैं। चेतावनी, इस रिपोर्ट में ऐसी सामग्री शामिल है जो कुछ श्रोताओं को भावनात्मक रूप से विचलित कर सकती है। नमस्कार, मैं हूँ वृषाली जैन और अब आइए जानते हैं स्टोलन जेनरेशंस की इस कहानी को थोड़ा और विस्तार से। कला एक ऐसा माध्यम है जिसका उपयोग अंकल रिचर्ड कैंपबेल ने पूरी जिंदगी अपनी बात कहने और अपनी कहानी साझा करने के लिए किया है। इसी कला के जरिए उन्होंने उन कठिन वर्षों को समझने की कोशिश की जब सरकारी नीतियों के तहत फर्स्ट नेशंस बच्चों को जबरन उनके परिवारों से अलग कर दिया जाता था। कला उनके जीवन में हमेशा मौजूद रही, तब भी जब किंचेला अबोरिजिनल बॉयज होम के प्रशासकों की ओर से उन्हें कठोर दंड और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था।
8: I used to do a lot of art before I used to get, you know, I went to the boys' home and once I get a kid doing art, you know, like drawing on walls and on concrete, that's the punishment for it, you know, I'm bashed across the knuckles and that, you know, so it didn't stop me, you know, I just kept practicing, you know, and I used to win prizes at schools and that, you know, West Kempsey School in Kempsey, you know, different prizes, you know.
7: New South Wales के मिड नॉर्थ कोस्ट क्षेत्र में स्थित इस संस्थान में 5 से 15 वर्ष की आयु के लगभग 600 अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर बच्चों को रखा गया था। नस्ल आधारित सरकारी नीतियों के तहत इन बच्चों को उनके परिवारों से जबरन अलग करके लाया गया था। ये संस्थान राज्य के अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता था और लगभग 5 दशकों तक चलने के बाद 1970 में बंद कर दिया गया। इन लड़कों पर किए गए अत्याचारों का विवरण 1997 में प्रकाशित ऐतिहासिक ब्रिंगिंग देम होम रिपोर्ट में दर्ज किया गया। ये रिपोर्ट राष्ट्रीय जांच के दौरान 500 से अधिक फर्स्ट नेशंस ऑस्ट्रेलियाई लोगों की गवाहियों पर आधारित थी। अंकल रिचर्ड कहते हैं कि उस दौर ने उनके जीवन पर गहरा और स्थायी असर छोड़ा। 10 वर्ष की उम्र में उन्हें अपने भाइयों और माता पिता से अलग कर दिया गया और फिर कई वर्षों बाद 18

0: वर्ष की आयु में उनकी अपनी माँ से दोबारा मुलाकात हुई, लेकिन उस बिछड़े रिश्ते को फिर से जोड़ना आसान नहीं था।
1: She knew me, but she didn't recognize my voice because I was speaking as a man, young man. Then you know, I went as a 10-year-old kid. You know, so you know, and you had your voice changed since I think like 8 years later on.
0: किंचरा बॉयज होम के अन्य जीवित बचे लोगों से दोबारा जुड़ने के बाद एक सहायता और अधिकार समर्थन समूह किंचरा बॉयज होम अबोरिजिनल कोऑपरेशन की स्थापना हुई। इस संगठन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि इन लोगों के अनुभव, उनकी आवाज और उनका दृष्टिकोण हर चर्चा और निर्णय के केंद्र में रहे। ब्रिंगिंग देम होम रिपोर्ट में हीलिंग और रिकंसिलिएशन को बढ़ावा देने के लिए 83 सिफारिशें की गई थी। इनमें क्षतिपूर्ति यानी रिपेरेशन और रिपोर्ट के शब्दों में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघनों के इतिहास को स्वीकार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। लेकिन लगभग 30 वर्षों बाद भी इन सिफारिशों में से 90% से अधिक अब तक अमल में नहीं आई। अधिवेता समूहों और समुदाय के नेताओं ने चिंता जताई कि अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर बच्चों को आज भी उनके परिवारों से बहुत अधिक संख्या में अलग किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के आंकड़ों के अनुसार फर्स्ट नेशंस बच्चों के आउट ऑफ होम केयर में रहने और किसी तीसरे पक्ष की अभिभावकीय जिम्मेदारी यानी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्डर के तहत होने की संभावना अन्य बच्चों की तुलना में 9.6 गुना ज्यादा है। अंकल हैरी रिची कहते हैं कि किंचरा अबोरिजिनल बॉयज होम में बिताए गए उनके वर्ष बेहद अमानवीय और अपमानजनक अनुभवों से भरे थे।
2: And since I walked in the gate, all my clothes, everything was thrown in a incinerator, and then I was showered, dusted, powder threw all over me. Then we went to the storeroom and got our clothes, which had a number on them, and 56 was my number. And I was called 56 until I got out at the age of 14. So all them years I was 56.
0: उनका कहना है कि जीवित बचे लोगों के लिए सुरक्षित और उपयुक्त आवास की व्यवस्था तथा बच्चों को उनके परिवारों से अलग किए जाने की बढ़ती दर को रोकना आज भी सबसे बड़ी चिंताओं में शामिल है।
2: Housing would be the main thing. Regional housing, you know. I'm lucky. I'm renting a house now, privately owned, you know. Some other, you know, they're out in the streets, you know, which is hard to see, you know, makes you want to cry sometimes seeing them, you know.
0: उस समय सरकार द्वारा जारी प्रचार सामग्री में बच्चों को संस्थान में रखे जाने को उचित ठहराया गया था। दावा किया गया था कि इसका उद्देश्य ऐसे उद्धरण के अनुसार स्वच्छ और स्वस्थ लड़कों का निर्माण करना है जो आगे चलकर उपयोगी नागरिक बने। बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों का इस्तेमाल भी प्रचार सामग्री में किया जाता था। कुछ पोस्टरों में संस्थान को एक तरह के कंट्री क्लब या आदर्श आवासीय केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। किंचरा बॉयज होम अबोरिजिनल कोऑपरेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर टिफनी मैककॉम से कहती हैं कि अतीत में फैलाए गए झूठे प्रचार को चुनौती देना और उसकी जगह सच्चाई को सामने लाना उन सामुदायिक पहलों की प्रमुख प्रेरणा रहा है जिनका नेतृत्व इन अंकल्स ने किया। चाहे वे 5 वर्षों तक स्कूल का दौरा करने वाली ओरल हिस्ट्री बस परियोजना हो या फिर ये नई कला प्रदर्शनी, इन सभी प्रयासों का उद्देश्य लोगों को ये बताना है कि वास्तव में क्या हुआ था और सर्वाइवर्स की कहानियों को केंद्र में लाना।
3: The Aborigines Welfare Board had this magazine called Dawn and New Dawn, and in the Dawn magazines they promoted these Stolen Generations institutions as places of well-being for the Aboriginal boys, girls and babies that were kidnapped and taken there. And many of the uncle's artworks have featured in that magazine with headlines of saying Kinchala, just like a country club, when we know it wasn't a country club, it was a site of incredible abuse and torture.
0: Uncle Roger Jarrett ka kehna hai ki pichle 12 mahino mein apni nayi paintings aur nakkashi ki tayari ki prakriya unke liye ek tarah se healing anubhav rahi hai.
4: This is one about the cheeky one, the little fellow that rock paintings, and he went inside and he scribbled all over them, and the elders and that got mad and they gave him all the rocks on the outside of the cave for him to scribble all over, which he did for a while. And eventually then he came back in and destroyed all that. So the elders then

0: They said the clever man turned him into a little drum, and they put him on the tree. And every time the bark falls off this gum tree, you'll see his family with all little squiggles on the tree. That's that one.
1: शारीरिक हिंसा और मारपीट के साथ साथ बच्चों को मानसिक रूप से भी नियंत्रित और प्रभावित करने की कोशिश की जाती थी।
0: They just flogged us, belt it up, and said we were little white soldiers. They'd say to you, "You're different. You're not black. You're white." And you have a look at yourself and say, "Good God, I look, I'm brown." You know what I mean? And there's something they drummed in the head, like what do they call it, every day they keep telling you. So in your head, you don't know where you're coming or going.
1: अन्य सर्वाइवर से जुड़कर और मिलकर सच्चाई को सामने लाने के प्रयासों ने उनके घाव भरने और आगे बढ़ने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रदर्शनी का नाम ट्रूथ टेलिंग आर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर है। ये कुलमन आर्ट्स हब के शुभारंभ का प्रतीक भी है, जो भविष्य में ऑनलाइन और गैलरी आधारित प्रदर्शनों का केंद्र बनेगा। अंकल रिचर्ड कैंपबेल की कलाकृति द कुलमन इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण है। कुलमन लकड़ी से तराशा गया एक पारंपरिक पात्र होता है, जिसका उपयोग फर्स्ट नेशंस महिलाएं पानी, फल और बीज ढोने के लिए करती थीं। कई बार इसे शिशुओं के लिए पोर्टेबल क्रेडल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। अंकल रिचर्ड का कहना है कि कुलमन आशा, देखभाल और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाने का प्रतीक है।
2: You know, it's all about my mother. Like I explained to him the other day, it's all about my mother and the mothers of all the boys and girls that was taken away, because they had their kids taken away, you know. And the Kulamon, it's a vessel of life. You could carry your water in it, you carry food in it, and also they used to put the babies in it as a little, you know, a little cradle, you know. So it's about everyone, you know, because we are a multicultural country, you know. Everybody's got to bring together and make this country a great.
1: ये प्रदर्शनी जुलाई के महीने भर जारी रहेगी। इसे सिडनी स्थित किंचला बॉयज होम अबोरिजिनल कोऑपरेशन में देखा जा सकता है। ये कुलमन आर्ट्स हब पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है। SBS न्यूज से बिवाकॉन की इस खबर को SBS हिंदी से आपके लिए प्रस्तुत किया वृषाली जैन ने। और इसी के साथ आपको इस प्यारे से गीत के साथ छोड़ कर के आज के लिए वृषाली ले रही है विदा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, उसमें कोई कोताही मत बरतिएगा। फिर मुलाकात होने तक के लिए नमस्कार।

दुनिया में रोकी इजीबेल, अमीर है खुश क्योंकि गरीबों की लगी सेल, गलती है किसकी और बदले में कौन चाहता जेल, पन्ना है चीता या रहना तो मैं बस एक स्नेल, मजबूर हूँ कभी ना होती प्लेट फुल, हरकतें मानेगा समाज मेरी शेमफुल, अकेला ही करूंगा मैं सारा वेट पुल, याद रखना द वन एंड ओनली बिग पुल।

का सरूर होगा, मुझे छोड़ गया तो क्या हुआ, आदत से मजबूर होगा, अल्लाह कसम यकीन है मर जाओगे, जो हमारे साथ किया आपके साथ भी जरूर होगा, आपके साथ भी जरूर होगा।

पाटों के तुझे भी कम ना रहे, जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे, प्यारा सा उसमें नहीं शक मुझे, but I want you to stay.

जी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे, जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay.

चलो आखिरी मुलाकात को यादगार बना देते हैं, जाते जाते तेरा ये वहम भी मिटा देते हैं। एक ही खासियत थी तुम में कि तुम्हें हम चाहते थे, आज तक यही झूठ कहा था तुमसे, चलो अब सच बता देते हैं।